सम्पूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामानका साथमा घडी, रेडियो, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरू, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मर्मत, फोटो खिच्न, फोटो धुलाई गर्न, फोटो फ्रेमिङ, सिसा फ्रेमिङ, फोटो कपी, लेमिनेसन, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, लेमिनेसन, कस्मेटिक आइटमका सम्पूर्ण सामानहरू, नाइलन छाप, प्रिन्ट छाप लगायत जस्तो सुकै सेवा आवश्यक भएमा वाना बजारमा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण काम। साइरस इलेक्ट्रोनिक्स पसल, पाँचकपन नगरपालिका, वाना बजार, सङ्खुवा सदा। प्रोप्राइटर सुमन श्रेष्ठ, 9823445631।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुराना सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रिचोक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153 87775।

सम्पूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामानका साथमा घडी, रेडियो, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरू, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मर्मत, फोटो खिच्न, फोटो धुलाई गर्न, फोटो फ्रेमिङ, सिसा फ्रेमिङ, फोटो कपी, लेमिनेसन, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, लेमिनेसन, कस्मेटिक आइटमका सम्पूर्ण सामानहरू, नाइलन छाप, प्रिन्ट छाप लगायत जस्तो सुकै सेवा आवश्यक भएमा वाना बजारमा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण काम। साइरस इलेक्ट्रोनिक्स पसल, पाँचकपन नगरपालिका, वाना बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर सुमन श्रेष्ठ, 98243445631।

पाखरीबास एफएम समय सूचना। यो पाखरीबास एफएम को समय हो। अहिले मध्याह्न 12 बज्यो।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुराना सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार श्री चौक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98621 37744 र 98153 87775।

0: Bonjour Lama, Baba Kostya önünce.
1: Takipte tanıştık. Taktaki çirkinli sansere nakkali. Diz vata sildi kate la kapar nante kapar. Çirkin bitre vata roman bana nante. Yürü bana çulu sapna kentere bana. दिल्ली जाना है क्योंकि ठुलो फैन मैं कल पुणे तो छुट्टे हो करने सब एक को प्यार माजी मैं अपने गांव ना मने कुछ ही भूल गई गांव मेरी कसम वे माजी को लाए रा रात मेरी काम है तेरी बाबा रे गाता अरे अरे मरे ने गांव ना जाने

सम्पूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामानका साथमा घडी, रेडियो, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरू, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मर्मत, फोटो खिच्न, फोटो धुलाई गर्न, फोटो फ्रेमिङ, सिसा फ्रेमिङ, फोटो कपी, लेमिनेसन, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, लेमिनेसन, कस्मेटिक आइटमका सम्पूर्ण सामानहरू, नाइलन छाप, प्रिन्ट छाप लगायत जस्तो सुकै सेवा आवश्यक भएमा वाना बजारमा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण काम। साइरस इलेक्ट्रोनिक्स पसल, पाँचकपन नगरपालिका, वाना बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर सुमन श्रेष्ठ, 98243445630।

सम्पूर्ण किसिमका इलेक्ट्रोनिक सामानका साथमा घडी, रेडियो, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरू, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मर्मत, फोटो खिच्न, फोटो धुलाई गर्न, फोटो फ्रेमिङ, सिसा फ्रेमिङ, फोटो कपी, लेमिनेसन, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, लेमिनेसन, कस्मेटिक आइटमका सम्पूर्ण सामानहरू, नाइलन छाप, प्रिन्ट छाप लगायत जस्तो सुकै सेवा आवश्यक भएमा वाना बजारमा एउटै छानामुनि सम्पूर्ण काम। साइरस इलेक्ट्रोनिक्स पसल, पाँचखपन नगरपालिका, वाना बजार, सङ्खुवा सभा। प्रोप्राइटर सुमन श्रेष्ठ, 9823445630।